0: तीन सौ डॉलर चुनाव या तो आम सुर के ना वहां कुछ वहां दे और ना तो सोगी ना हम बहुत पूर्व आए गेंगे ये मैं तो हम तो नहीं तुम तो तांग गांधे मैं ये जा भी और आप खाने से नहीं जाता और नरा मोरा जाए जाता बुजुर्ग नरा जाए जाता जैसे तो बहुत सुख रही है ये हाँ तो कहाँ ना पे यो देने मुझे तो आगे आते हैं फॉक्स के एक्सिंग की नया ना फॉक्स है
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.